这里广播电台，听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

अभी आप कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस बालकांड 112।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहों ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: अभी आप रामचरितमानस सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया सम्बद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोषाणां

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केन्द्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष

0: उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री

0: पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
1: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4th अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: PM The Morning News. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खित्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बिनीस के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदामात का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवियत मिलेगी।
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcome today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की, ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
2: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 8:45 और 16 सेकंड हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सईद अहमद खान का सितार वादन राग शुद्ध सारंग में। तबले पर संगत की है विनोद पाठक ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सईद अहमद खान का सितार वादन सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में। तबले पर संगत की थी विनोद पाठक ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी जी के व्यक्तित्व पर विश्व प्रसिद्ध लेखकों और विचारकों का प्रभाव। आलेख एवं स्वर अपराजिता श्रीवास्तव।
1: मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने के पीछे दुनिया के महान विचारकों और लेखकों के दर्शन का एक गहरा समुद्र छिपा था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, विश्व के इस महान वैज्ञानिक ने गांधी जी के व्यक्तित्व और सादगी की अत्यधिक प्रशंसा की। भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हार्ड मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया और साथ ही दुनिया भर में पीड़ित समुदायों की आवाज उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया। साथ ही महात्मा गांधी को विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मैंडेला ने प्रेरित किया। गांधी जी कोई जड़ विचारक नहीं थे, वे एक खुले दिमाग वाले खोजी थे। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं अपने घर के चारों ओर दीवारें नहीं चाहता और ना ही अपनी खिड़कियों को बंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से बहे। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कोई आकस्मिक घटना नहीं था, बल्कि यह दुनिया भर के महान विचारकों और लेखकों के दर्शन का एक अनूठा संगम था। गांधी जी ने स्वयं स्वीकारा था कि उनके विचारों को गढ़ने में पश्चिम और पूर्व के लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए जानते हैं उन वैश्विक महापुरुषों के बारे में जिन्होंने गांधी जी के विचारों को एक आकार दिया। उनमें पहला नाम आता है लियो टॉल्स्टॉय का। लियो टॉल्स्टॉय का गांधी जी पर सबसे गहरा प्रभाव था, शायद इसलिए गांधी जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जिसका हिंदी में अर्थ है ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इस पुस्तक ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। टॉल्स्टॉय से अहिंसा और प्रेम का सार्वभौमिक सिद्धांत आया। इस पुस्तक ने गांधी जी के मन से हिंसा के प्रति संशय को मिटा दिया और उन्हें अहिंसा के सिद्धांत पर अटूट विश्वास दिलाया। टॉल्स्टॉय के प्रेम के सिद्धांत और शारीरिक श्रम की अवधारणा ने गांधी जी के आश्रम जीवन की नींव रखी। और ऐसे ही जॉन रस्किन की एक छोटी सी किताब अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। गांधी जी ने इस पुस्तक को अपनी यात्रा के दौरान पढ़ा और इसी से सर्वोदय यानी सभी के उदय का सिद्धांत निकाला। रस्किन से शारीरिक श्रम का सम्मान और सर्वोदय का पाठ सीखा। उन्होंने इस पुस्तक से सीखा कि एक वकील के काम की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक बाल काटने वाले की। गांधी जी को ये समझ आ गया था कि व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण में ही निहित है और इस प्रेरणा के पीछे थे हेनरी डेविड थोरो। थोरो एक अमेरिकी निबंधकार थे। थोरो ने गांधी जी को वह हथियार दिया जिसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया। थोरो से उन्होंने सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपनाई। उनके निबंध सिविल डिसोबीडियंस से गांधी जी को करबंदी और अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ने की प्रेरणा मिली। थोरो के सादा जीवन और उच्च विचार के दर्शन ने भी गांधी जी को काफी प्रेरित किया। कई विदेशी लेखकों से प्रभावित होने के बावजूद गांधी जी को उनके आध्यात्मिक संकटों में मार्गदर्शन करने वाले कोई विदेशी नहीं बल्कि जैन दर्शनीय श्रीमद् राजचंद्र थे। राजचंद्र जी ने गांधी जी को भारतीय संस्कृति, धर्म और आत्मसंयम की गहराई से परिचित कराया, शायद इसलिए गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। गांधी जी का व्यक्तित्व सिर्फ लेखकों तक सीमित नहीं था, उन्होंने विभिन्न धर्मों के सार को भी अपनाया, जिनमें पहला नाम है भगवद गीता। इसे वह अपना आध्यात्मिक शब्दकोश स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहते थे। निष्काम कर्म का पाठ उन्होंने यहीं से सीखा।

0: में दूसरा नाम शामिल है बाइबल का। ईसा मसीह के पर्वतीय उपदेशों ने उनके अहिंसा और बुराई का जवाब भलाई से देने के विचार को पुख्ता किया। गांधी जी का अपना साहित्य इतना प्रभावी और प्रेरणादायक था कि दुनिया के कई जाने माने लेखकों ने उनके विचारों को अपनी रचनाओं में जगह दी। राजा राव, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार राजा राव की प्रसिद्ध कृति कंथापुरा गांधीवादी दर्शन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आधारित थी। मुल्क राज आनंद अपनी यथार्थवादी रचनाओं के लिए जाने जाने वाले लेखक मुल्क राज आनंद के उपन्यासों में गांधी जी की अहिंसा और सामाजिक न्याय की विचारधारा का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। गांधी जी ने इन सभी विचारों को केवल पढ़ा नहीं बल्कि अपने जीवन की प्रयोगशाला में भी इनका प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व एक ऐसी विचारधारा है जिसने समय और भौगोलिक सीमाओं को पार करके वैश्विक समाज को शांति और मानवता का रास्ता दिखाया। उनकी सादगी और विचारों की मजबूती आज भी दुनिया भर के लेखकों और समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। गांधी जी ने इन विदेशी और भारतीय विचारों को केवल पढ़ा नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन की प्रयोगशाला में भी आजमाया। उन्होंने टॉलस्टॉय से प्रेम लिया, रस्किन से सम्मान्यता ली, थोरो से विद्रोह की कला सीखी और गीता से कर्तव्य का मार्ग चुना।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था गांधी जी के व्यक्तित्व पर विश्व प्रसिद्ध लेखकों और विचारकों का प्रभाव। आलेख एवं स्वर अपराजिता श्रीवास्तव।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

भारतीय दे रस्मी नकोस वजीर हिंद नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया यक संगे मील काबिल तवज्जो रहा दर रवाबित हिंदो ऑस्ट्रेलिया निशानदा दे व हर तो किश्वर इकदाम मुहिम में मुतद रहा बरा मकसादी हमकारी दर हमें बख्शाई मुहिम इतखाद में नवायन दरहन आगाही बेरसानहा मोदी रे उमूर खारजे विक्रम अल्बानी

Ma.

bully. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعلموا

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा

जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Sweden. घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर
1: और रश्मि कुकरेती। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और रश्मि जी, कैसी हैं आप?
1: जी बढ़िया।
0: और आज जो हम कार्यक्रम सुन रहे हैं और हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, वो FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: और सिमरन, हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न पूछते हैं अपने श्रोताओं से, तो आज का प्रश्न आप क्या लेकर आई हैं?
0: देखो, आज है खास विशेष हमारा कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। तो आज का हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं अपने श्रोताओं से, वो रहेगा हमारा परिवार को एकजुट रखने का सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है।
1: जी, अपने विचार हमें लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com इस ईमेल पर, क्योंकि देखिए सिमरन, परिवार में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है ना, तो कई बार मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन आपके ऐसे

0: कुछ अनुभव रहे होंगे जरूर कि किस तरह से हम परिवार को जोड़कर रख सकते हैं। तो जल्दी से लिख भेजिए ये जवाब कि परिवार को किस प्रकार जोड़ सकते हैं आप।
1: और तब तक हम अपने श्रोताओं को सुनाते एक मीठा सा प्यारा सा गीत।

0: मिलजुल कर कुछ कम कम करें। बिल्कुल। और अभी आप सुन रहे थे एक गीत हमारे तुम्हारे फिल्म से, और गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार।
1: और सिमरन, जो हमारा प्रश्न था ना कि परिवार को जोड़कर रखने का मूल मंत्र क्या है, बहुत सारे जवाब दोस्तों इस गीत में छुपे थे, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा रश्मि जी आपने, क्योंकि जब आप परिवार की बात करते हैं तो परिवार में तो हर तरह का सदस्य होता है और हर तरह के मिजाज होते हैं उनके अलग अलग
1: जी, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बात धैर्य के साथ सुने, छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखें और हर सदस्य को ये एहसास कराएं कि वो परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, तो विश्वास कीजिए रिश्ते मजबूत जरूर बने रहेंगे, है ना?
0: बिल्कुल बने रहेंगे। और रश्मि जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारा कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है एक कदम बुजुर्गों की ओर। तो जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो इस सच है कि वरिष्ठ जन हमारे घर की नींव होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत भाग्य वालों को नसीब होता है, और इसीलिए सभी को अपनों से बड़े और वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए।
1: बुजुर्गों के अनुभव और सीख से हम जीवन में आई विपत्तियों से तो पार पा ही सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे समाज की अनमोल विरासत होते हैं।
0: और रश्मि जी देखिए, हम अपने जीवन में कितने भी बड़े बन जाएं, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ हमारे घर की तरक्की हो सकती है पूरी तरह से।
1: भाई, बड़ों का होना अगर है तो सुरक्षा है, संस्कार है, संवेदना है, ज्ञान है, और जो अपनी पारिवारिक जड़ें हैं ना, उनको जोड़े रखने के लिए तो ये अति आवश्यक है। उनका जो जीवन जीने की कला सिखाने का जो तरीका होता है ना, वो तो प्यार और दुलार से भरा हुआ होता है।
0: और उनके साथ खड़े होना परिवार की जिम्मेदारी है। उन्हें सम्मान, प्यार और देखभाल दें, जैसा कि उन्होंने आपको तब दिया था जब आप उन पर निर्भर थे, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है ना?
1: जी बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज में गीत, फिल्म थी खूबसूरत।
1: और सिमरन, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि भाई परिवार को साथ रखने का

0: मूल मंत्र है प्यार। अगर मान होता रहे एक दूसरे का तो परिवार एक साथ जुट
1: बिल्कुल
0: रहता। और
1: सही
0: मधु
1: कहा।
0: किरण हमें कह रही है भाई, एक चुप सौ सुख।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये तो सबसे अच्छी बात है परिवार के
0: हाँ,
1: लिए।
0: और प्रकाश चंद गोगिया भी जुड़ गए हैं, उनका भी यही कहना है। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ गए हैं। नवीन भाटिया कह रहे हैं कि बुजुर्गों को इज्जत दें और छोटों को प्यार दें, उनकी भी बात सुने, और कभी क्रोध जो अगर आ जाए तो शांति बनाए रखें। मोतीनगर से आप हैं, और साथ डॉक्टर राजेश्वर राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं
1: कि भाई हर हफ्ते के जो फिक्स फैमिली टाइम रखिए, जिससे डिनर के लिए छोटी मीटिंग जा, मतलब मेरा कहने का मतलब इनका ये है, और मेरा कहने का भी मतलब ये है रश्मि जी, कि सब बैठ के इकट्ठे खाना खाएं, बुजुर्ग भी साथ में बैठ के प्यार से खाना खाएं तो कितना अच्छा लगता है। अकेले खाना ना खाएं,
0: जी।
1: उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए,
0: और
1: है
0: साथ
1: ना।
0: में एक और हमारे पास मेल आ गई है, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन परिवार को एक साथ रखना सबसे ज्यादा स्त्री का काम है, माँ का काम है, वही कोशिश मैं भी करती हूँ। मैं तो शाम को सब एक साथ डिनर करवाने की कोशिश करती हूँ, सब एक साथ आए, सब मिलकर दिन भर की बातें करें, और रविवार को टीवी पर कोई एक साथ मूवी देखकर गप्पे मारते हैं।
1: बहुत बढ़िया, है
0: तो
1: ना,
0: क्या कहेंगी आप सिमरन?
1: बहुत अच्छी बात है, और इन्होंने इतनी अच्छा लिखा है, और ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से भी ये बिल्कुल सही है ना।
0: मुझे लगता है कि स्त्री का तो काम है ही, लेकिन बाकी सबका भी काम है, चाहे वो घर के
1: घर के
0: पुरुष हो
1: पुरुष हो
0: या
1: या
0: घर के वरिष्ठ हो, सभी को कोशिश करनी
1: जितने भी
0: चाहिए।
1: सदस्य घर में रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर काम को करें तो बहुत अच्छा होता है।
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो।
1: तो बात तो ये हुई है कि जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, तो इसके साथ साथ मैं एक बात करना चाहती हूँ रश्मि जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कुछ बातों का शुरू से ध्यान रख लें तो कितना अच्छा हो जाए, इस परेशानी से हम बच सकते हैं।
0: हाँ, यानी कहना चाहती हो कि अगर हम 60 और 55 के हो जाएं तो भाई किस प्रकार से दिनचर्या को व्यवस्थित रखें कि हम स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नियमित एक्सरसाइज करना हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही एक प्राकृतिक मूड बूस्टर है। पैदल चलना या तैरना जैसी हल्की एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद साबित होती है।
0: और इसके साथ अगर नियमित स्वास्थ्य जांच हो जाए तो ये एक ऐसी सावधानी है जिसमें हम समय समय पर अगर जांच करवाते रहेंगे तो हम जरूर उसमें जो भी हमारे स्वास्थ्य में कमियां हैं वो पकड़ पाएंगे, डॉक्टर से उचित समय पर परामर्श ले सकेंगे।
1: रश्मि जी, एक बात ये है कि जब तक हम अपनी नींद को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा महत्व क्या है। अच्छी नींद के लिए गुणवत्ता वाली नींद हमें दुगनी ऊर्जा देती है।
0: और ये भी होता है सिमरन कि जब उम्र बढ़ती है तो हमारी प्यास की अनुभूति इतनी तीव्र नहीं रह जाती, तो पानी की पूर्ति करना बहुत जरूरी है, पानी पीते रहें।
1: और इसके अलावा तनाव की मौजूदगी नहीं बल्कि हम उससे कैसे निपट

0: के समय में परिवार को संभालना बहुत टेढ़ी खीर है, वही सही
1: बहुत
0: कहा।
1: अच्छा कहा ना
0: और फिर
1: इन्होंने
0: भी कोशिश
1: रश्मि।
0: करने में कोई बुराई नहीं है, आपने सही कहा, गलतियों को माफ करने में अच्छा ही है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, इसी में समय खुशी से बीत जाएगा। बाकी आप सब, आपको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में रश्मि जी, मेरे पास एक और मेल आ गया है, मेरे पास आया है सुनैना गुप्ता, नीना गुप्ता और नीतू गुप्ता का, ये आया है मेरठ से। इन्होंने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी कविता लिख के हमें भेजी है। इन्होंने कहा है कि बड़े बुजुर्ग जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बनकर खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। कितनी खूबसूरत कविता लिख के भेजी है इन्होंने।
0: और एक और मेल हमारे पास आ गया मयूर बिहार से, सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि उनके अनुभव में परिवार को जोड़कर रखने में सबसे जरूरी है रिश्तों को अहंकार से ऊपर रखा जाए। कई बार छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराकर पहल कर दे तो मनमुटाव खत्म हो जाता है। परिवार में केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। जब बड़े प्यार और धैर्य से मार्गदर्शन करें और छोटे उनका सम्मान करें, तब घर में अपनापन बना रहता है। आखिरकार परिवार वही जगह है जहां बिना किसी शर्त के अपनापन मिलता है। भाई बहुत खूबसूरत,
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनकी बातें, इन्होंने बहुत प्यारा मेल भेजा है। और अब बात करते हैं रश्मि जी कुछ बुजुर्गों की तरफ फिर से आते हैं। जब परिवार की बात हम कर ही रहे हैं तो साथ में बुजुर्गों के लिए योजनाओं की बात कुछ कर लेते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसलिए सरकार ने खास उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। अगर इस समय योजनाओं का इस्तेमाल किया जाए तो जीवन आराम से बीत सकता है और सिस्टमैटिक प्लान भी बुजुर्गों के इनकम का एक जरिया हो सकता है।
0: जी, और सिस्टमैटिक प्लान की जब आपने बात कही तो इसमें SIP और म्यूचुअल फंड की भी हम बात कर सकते हैं, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ अपने म्यूचुअल फंड चुने।
1: बिल्कुल। और सरकार ने 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी शुरुआत की है।
0: जी, और इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने सरकार लेकर आई है और टैक्स में छूट का फायदा लेने के लिए इस योजना में, हालांकि जो 60 से जो कम उम्र के नौकरी पेशा लोग हैं वो भी निवेश करते हैं, लेकिन इस स्कीम में निवेश करने के लिए करीब जो रिटर्न है वो जो सामान्य FD होती है उससे थोड़ा ज्यादा होता है और 1,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है। तो फिर आगे सिमरन कुछ कहना चाहोगी?
1: मैं कहना चाहूंगी रश्मि जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि खाता किसी भी अधिकृत बैंक या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक और या फिर सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक में जाकर नजदीकी डाकघर पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं।
0: जी, ये बहुत सुरक्षित निवेश है, इसलिए कर सकते हैं।
1: तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म थी कल आज और कल।
1: और एक बहुत अच्छा मूल मंत्र हमारे पास आ गया है, आप हैं गौरी शंकर नागलोई से, आप कह रहे हैं सिमरन रश्मि राम राम, राम राम जी, समय का पहिया रुकता नहीं है और आज

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में गीत फिल्म थी सितारा। और रश्मि जी, मैं एक बार फिर से अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को बता दूं कि परिवार को एकजुट रखने का सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन के साथ आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपका इंतजार, जल्द से जल्द फटाफट हमें मेल भेजिए,
1: जल्दी से लिख भेजिए। और इस बीच में और मेल्स जो आ गई हैं वो पढ़ देती हूँ। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने मूल मंत्र जो लिखकर भेजे वो है, सबसे बड़ी सीख है अपनों से हार जाना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, और जहां बुजुर्ग हैं वहां बरकत है, और वो कहते हैं परिवार वो सुरक्षा कवच है जहां हर कोई शांति महसूस करता है।
0: बहुत बढ़िया लिख के भेजा है इन्होंने रश्मि जी, ये तो बहुत ही अच्छा लिख के भेजा, और सच में परिवार वही जगह है।
1: और कामायनी लक्ष्मी नगर से कुछ कह रही हैं,
0: ये कह रही हैं कि मैंने एक बात पढ़ी थी रिश्तों और परिवार के संदर्भ में, मतलब परिवार के बारे में, बहुत फिट बैठती है कि सब कुछ अच्छा बनाना पड़ता है अपने आप को, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से।
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: यानी अंदाज भी हो और नजर अंदाज भी हो। और एक और हमारे पास मेल आ गई है, आप हैं गुड़गांव से जितेंद्र, आप वो कह रहे हैं कि परिवार को एकजुट रखने का सबसे बड़ा मंत्र अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि रिश्तों में जीतने की नहीं निभाने की कोशिश कीजिए। यही ऐसा ही कुछ संदेश पहले भी प्राप्त हुआ था, और वो कहते हैं कि परिवार एक पेड़ की तरह होती है।

0: की जड़ें हैं संस्कार, तना है विश्वास और शाखाएं हैं रिश्ते और फल हैं खुशियां। भाई वाह, क्या बात है।
1: अच्छा लगा ना?
0: यदि जड़ों को प्यार, सम्मान और संवाद का पानी मिलता रहे तो चाहे कितने भी तूफान आए परिवार मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी यही जरूरत है। तो मोबाइल पर कम समय बिताएं और परिवार के साथ ज्यादा बिताएं। सिमरन, एक बात और कहती हूँ, मेरी एक बात हो रही थी, हमारे जानकारी में है एक और बहुत बड़ा परिवार है उनका, करीब करीब 20 सदस्यों का बड़ा भरा पूरा परिवार है, अलग अलग फ्लोर्स में रहते हैं। जब उनसे बात हुई कि किस प्रकार आप साथ रहते, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये आदत है कि जो छोटे हैं बच्चे वो सवेरे उठकर बुजुर्गों के पांव छू लेते हैं और कोई किसी को कुछ भी बोल दे, लेकिन अगले दिन अगर छोटा जब आके बड़ों का पांव छूते हैं तो बड़ा भी जो है हंस के माफ करना सोचता कि चलो अब ये झुक ही गया। तो क्या अहंकार रखना, क्या गुस्सा रखना। जी जी, तो ये छह छोटे ऐसे मंत्र है कि अगर आप झुक जाए तो फिर समझिए
1: फिर तो फिर कोई लड़ाई नहीं, कोई बात ही नहीं। और देखो परिवार में तो रश्मि जी ये होता ही है कि कोई किसी स्वभाव का होता है, कोई किसी स्वभाव का। और कहते हैं ना मुट्ठी बंद रहती है तो वो बहुत अच्छी रहती है ना, जब खुल जाती है तो अलग अलग। तो सबकी मुट्ठी एक साथ बंद रहे और हर काम एक साथ करे तो बहुत अच्छा रहता है।
0: और मैं तो ये कहूंगी कि अगर जो छोटे बच्चे हैं वो दादा नानी दादी के साथ नाना नानी के साथ रहे तो बहुत अच्छा लगता है। भाई दादा दादी और नाना नानी के पास बहुत सारे अनुभव सीख होते हैं, वो कहानियों में भी सुनाते हैं वो अनुभव और सीख, है ना।
1: सही कहा और आपने। और देखो ये बात में मैंने आपकी बात मानी कि पहले टीवी नहीं मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी एक चीज होती थी कहानी, और वो कहानी सुनाते थे दादा दादी नाना नानी हमारे, और संस्कार और सीख कहानियों से राजा रानी चतुर खरगोश लाल जी को वह नहीं होते थे, होते थे सच ईमानदारी मेहनत और मदद के पाठ, यानी कि बीरबल की चतुराई, पंचतंत्र की नीति, और ये सब बिना उपदेश के हमें यूं ही मिल जाता था सीखने को।
0: जी, और जब दादी बोलती थी ना, बहुत समय पहले की बात है, तो हमारा दिमाग खुद ही ना जंगल, किला और परी बना लेता था सिमरन। और आज तो सब बच्चे फोन पर देखते हैं, लेकिन तब तो ना हम खुद सोचते थे। और सच बताऊं सिमरन, हमारी भाषा भी इससे मजबूत हुई और शब्दों का खजाना भी बढ़ा।
1: और एक बात मैं कहूंगी रश्मि जी कि नाना नानी वाली कहानियों से गांव, खेत, त्योहार, लोकगीत और आ जाते थे, हमें पता चलता था कि हमारे पूर्वज कैसे जीते हैं। यही कहानियां हमें अपनी मिट्टी से जोड़ती हैं और कहानी संस्कार देती है।
0: और सच बताऊं जब दादा दादी और नाना नानी की गोद में सर रखकर कहानी सुनते थे ना, तो बड़ा सुकून मिलता था। जो बच्चों बचपन में मन में कभी एंग्जाइटी, दुख, कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि नींद नहीं आ रही, भाई जब दादी ना अपनी आवाज में धीरे धीरे कहानी सुनाए तो सच बताओ सुनते सुनते ही हम सो जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहानी के साथ एक लाइन हमेशा आती थी, बेटा हमारे समय में, यानी कि वो एक लाइन 50 किताबों से ज्यादा सिखा देती थी, हार, संघर्ष, त्याग सब कहानी सुनकर आता रहता।
0: तो हम यही कहेंगे कि भाई रोज 10 मिनट जो है बुजुर्गों के पास बैठिए और बच्चों को जो बुजुर्गों की कहानियों से कभी दूर ना होने दें, क्योंकि ये जो सीख है ना, ये तो मैं कहूंगी भाग्यशाली बच्चों को ही मिलती है ना।

0: आइए सुनते हैं गीत। फिल्म है मिस्टर नटवरलाल और आवाज है किशोर कुमार की।
1: आओ बच्चों,
0: आवाज है अमिताभ बच्चन की।
1: कहानी सुनाता हूँ मैं, शेर की कहानी सुनोगे?

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ।

0: तो भाई वाह, सिमरन कहानी की बातें हो रही थी और तुमने तो गीत में ही कहानी सुनवा दी, और सच बताओ मजा आ गया ये कहानी सुनकर।
1: मजा आया ना भाई, दादा दादी नाना नानी की कहानियां इतनी अच्छी लगती हैं, आज भी मन करता है जरा टाइम मिल जाए, समय मिल जाए तो बैठ जाए उनके पास।
0: और देखिए एक और हमें ला गया हमारे पास, पढ़िए। महेश अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई परिवार जो है वो चमकते जा रहे हैं और जमीन छोटी होती जा रही है, रहन सहन छोटा होता जा रहा है और ना ही लोगों के पास समय रहा कि जो परिवार के साथ मिलकर बैठे। तो ये यही हमें रोकना है, हमें मिलकर भी बैठना है, एक दूसरे से रिश्ते बनाए भी रखने हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि जी आपने जी। और क्योंकि साथ में जब रहेंगे तो वो प्यार, वो सम्मान, वो रिश्ते पक्के मजबूत तभी तो होंगे। और मोबाइल को साथ में हटा के, ये नहीं कि साथ में उसे जोड़ के रखे, है ना?
0: जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राघव दिलशाद गार्डन से, वो कहते हैं कि एक बार मेरी माँ ने कहा था कि थाली में दाल चावल सब्जी रोटी और अचार सबका स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जब सब साथ होते हैं तभी भोजन पूरा लगता है। परिवार में भी ऐसा ही है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, कोई शांत, कोई गुस्से वाला, कोई भावुक, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। बहुत खूबसूरत,
1: बहुत अच्छा लिख के भेजा है इन्होंने। और एक और अभी तो आया है ना जी, रश्मि जी आपके पास।
0: एक और हमारे पास मेल आ गया है शालीमार गार्डन से, आप हमसे जुड़ गई हैं। उमा जी ये कह रही हैं कि मेरी दादी कहा करती थी, घर जो बड़ा होता है वो कमरों से नहीं होता, दिलों से होता है। जब भी परिवार में किसी बात पर नाराज होती है तो वो सबसे पहले चाय बनाती है और सबको एक साथ बैठा देती है, आधी समस्या तो साथ बैठने से ही खत्म हो जाती है और संवाद जो है वो चलता रहता
1: और रिश्ते भी चलते रहते और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, है ना जी। और इसके अलावा रश्मि जी एक और मेल आया है, ये है ये रीता, नीना और रितिका का, है ना
0: जी,
1: ये
0: उत्तम नगर से,
1: ये उत्तम नगर से आया है। ये है एक लिखा है इन्होंने कि गांव में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था, इनका कहना

0: गर्मी आई, बारिश आई, पर वो हमेशा खड़ा रहा रहता था क्योंकि दादाजी कहते थे कि इसकी वजह जड़ों में है, खास तौर पर क्योंकि परिवार भी ऐसा है, हमारी जड़ें हैं, संस्कार है, विश्वास है, प्रेम है, और अगर जड़ें मजबूत रहे तो जीवन में कोई भी कभी भी आंधी आ जाए लेकिन परिवार कभी नहीं हिल सकता।
1: भाई सिमरन, हमारे जो श्रोता है वो कितने गुणी और कितने समझदार है, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे,
0: है ना। और हमारे जो कार्यक्रम का जो ये जो प्रश्न है उनके साथ साथ मेल हमें बहुत ही खूबसूरत भी आए हैं, हमें लिख के भेज रहे हैं जो मेल। अच्छा एक बात मैं और कहूंगी रश्मि जी, कि आजकल मौसम बदल रहा है, खास तौर पे हम बुजुर्गों की जब बात करते हैं तो उनके खान पान का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था के साथ होने वाले विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को देखते हुए बदलते मौसम बुजुर्गों के खान पान का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
1: और सिमरन देखो, जब उम्र बढ़ती है तो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, तो हमें उन पदार्थों को शामिल करना चाहिए अपने खाने में जिनसे इन पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। जैसे कि कैल्शियम के लिए हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और सूर्य का प्रकाश लेना तो बहुत जरूरी है ही, साथ में उम्र बढ़ने के साथ जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, तो थोड़ा जिंक भी हमें लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, और नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोटेशियम को अपने भोजन में शामिल करना बेहद जरूरी है।
1: और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी हृदय संबंधी रोगों की संभावना 50% तक कम हो जाती है, तो इसे भोजन में शामिल करना ना भूलें।
0: और शरीर के खराब जहरीले पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए 8-10 ग्लास पानी की जरूरत तो होती ही है।
1: तो ये कहना सही रहेगा सिमरन कि अकेले खाने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम परिवार
0: अभी
1: को
0: अभी कहने वाली थी रश्मि जी, कि अभी मेल भी इसी बारे में आया था कि अकेले खाने से बचना चाहिए, बैठ के सबके साथ खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसी में प्यार है और प्यार की परंपरा हमेशा रहनी चाहिए
1: जी। पोषक खाना खाइए और सब मिलकर खाना खाइए, मिलकर रहिए।

0: लक्ष्मी जी, एक और मेल आया है मेरे पास, मैं साथ चाहती हूँ कि चलते चलते मैं उनको एक मेल और अपने श्रोताओं को बताऊँ। शालिनी अग्रवाल, रचना अग्रवाल और रीना गोयल का चंद्र विहार से, इन्होंने दो लाइनें लिखी हैं रश्मि जी, लेकिन बहुत प्यारी लिखी हैं कि हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है, उन्होंने ही तो सिखाया प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है।
1: जी, और एक मेल मेरे पास आया है, आप कह रहे हैं कि दो भाइयों में, इन्होंने कहानी लिखकर भेजी है सिमरन, कह रहे हैं दो भाइयों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। एक दिन एक बड़े ही वहां आया तो बड़े भाई ने कहा हमारे खेतों के बीच जो है ऊंची दीवार बना दो। बड़ई ने शाम तक वहां काम किया और जब दोनों भाई शाम को आए तो वहां पता क्या था, वहां दीवार नहीं थी बल्कि एक सुंदर लकड़ी का पुल बना था। तो दोनों भाई एक दूसरे की ओर बढ़े और गले मिले और उनकी सारी नाराजगी खत्म हो गई। भाई वाह, रिश्तों में तो दीवार नहीं होनी चाहिए, पुल ही होना चाहिए, पुल होना चाहिए ताकि एक दूसरे से जुड़े रहे। और ये खूबसूरत कहानी हमें लिखकर भेजी थी विकासपुरी से उमेश जी ने।

0: रश्मि जी, अब देखिए समय तो धीरे धीरे चल, गाना तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे पास समय नहीं है धीरे धीरे चलने का।
1: तो समेटते हैं कार्यक्रम।
0: कहना चाहते हैं कि हम यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के

0: प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हां कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहां पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहां पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहां पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहां पर, क्योंकि भारत और यहां के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. The grand tour culminated in spectacular sports diplomacy at the iconic Melbourne Cricket Ground. Standing on the historic turf, the two leaders officially launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap. Prime Minister Narendra Modi will reach Auckland today on a two-day visit to New Zealand. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India and New Zealand are celebrating 100 years of sporting ties in 2026. Hockey, which started this journey in 1926, continues to bring the two countries closer. The sporting relationship began in 1926 when the Indian Army hockey team became the first Indian sports team to tour New Zealand. Former Hockey New Zealand CEO and 1976 Olympic gold medalist Ramesh Patel says Prime Minister Narendra Modi's visit will further strengthen sports cooperation between the two countries. As India and New Zealand celebrate a century of sporting ties, hockey remains a strong bridge of friendship, connecting the people of both countries and inspiring future generations. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said clean energy met over 50% of the country's electricity demand for the second time. In a social media post, Mr. Joshi said renewable sources contributed 50.2% of the power supply on the 6th of this month. The minister called this a testament to the growing strength and reliability of India's clean energy ecosystem. He said under the leadership of Prime Minister Modi, India continues to power sustainable growth with speed and

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओ, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने 80 के दशक में हर दिल को छू लिया था।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1981 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म एक दूजे के लिए। इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई बल्कि इसे भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार इमोशनल प्रेम कहानी में से एक बना दिया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था साउथ के मशहूर फिल्म मेकर के बालाचंद्रन ने। मूल कहानी और पटकथा भी के बालाचंद्रन ने ही लिखा है। डायलॉग इंदर राज आनंद का है और निर्माता थे LV प्रसाद। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी जो फिल्म है वो है एक दूजे के लिए। ये फिल्म उन्हीं की उनकी तेलुगु फिल्म मारो चरित्र का हिंदी रीमेक थी, जिसमें भी हीरो कमल हासन ही थे, लेकिन इस बार उनके ऑपोजिट थी खूबसूरत और टैलेंटेड रति अग्निहोत्री जी, और साथी कलाकारों में थे माधवी रजा मुराद, अरविंद पदेश पांडे, राकेश बेदी, शोभा खोटे, मधु मालिनी असरानी, सत्येंद्र कपूर और सुनील थापा। कमल हसन और रति अग्निहोत्री की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इस फिल्म ने दोनों को हिंदी सिनेमा का बड़ा सितारा बना दिया। कमल हसन की ये पहली हिंदी फिल्म थी और इस फिल्म के बाद वे रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनके शानदार अभिनय और बालाचंद्रन के जबरदस्त निर्देशन ने इसे एक आइकॉनिक फिल्म बना दिया। और एक बात और, रति अग्निहोत्री इस फिल्म में जब इन्होंने इस फिल्म को साइन किया था तो वो सिर्फ महज 16 साल की थी। तो चलिए सुनते हैं इसे फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है एक दूजे के लिए। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये कहानी उत्तर और दक्षिण के प्यार की है। कहानी थी एक उत्तर भारतीय परिवार की लड़की सपना और एक तमिल लड़के वासु की। दोनों के परिवार गोवा में पड़ोसी हैं। दोनों का प्यार घर वालों को पता चलता है तो तूफान आ जाता है। मोबाइल और इंटरनेट टाइप की चीज तब दुनिया में आई नहीं थी। तब घर वालों ने शर्त ये रखी थी कि अगर दोनों पूरा एक साल बिना एक दूसरे से किसी भी तरह का संपर्क किए बिना बिता लेंगे तभी दोनों की शादी हो सकेगी। वासु हैदराबाद चला जाता है। रोज सपना को एक खत लिखता है लेकिन पोस्ट नहीं करता। एक विधवा युवती संध्या से हिंदी सीखने की कोशिश करता है। संध्या उसे भरतनाट्यम भी सिखाती है। फिर

टाइप की चीज तब दुनिया में आई नहीं थी। तब घर वालों ने शर्त ये रखी थी कि अगर दोनों पूरा एक साल बिना एक दूसरे से किसी भी तरह का संपर्क किए बिना बिता लेंगे तभी दोनों की शादी हो सकेगी। वासु हैदराबाद चला जाता है, रोज सपना को एक खत लिखता है लेकिन पोस्ट नहीं करता। एक विधवा युवती संध्या से हिंदी सीखने की कोशिश करता है, संध्या उसे भरतनाट्यम भी सिखाती है। फिर

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है एक दूजे के लिए। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की, जो अपने समय में सुपरहिट साबित हुआ। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, और गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने, और इन गीतों को आवाज़ दिया था लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा और एसबी बाला सुब्रमण्यम ने। खास बात ये थी कि इस फिल्म के लिए सिंगर एसबी बाला सुब्रमण्यम को जब चुना गया तो साउथ के जाने माने गायक थे वो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को शुरू में संदेह था कि क्या वे हिंदी गानों को के साथ न्याय कर पाएंगे, लेकिन इस पर बालाचंद्रन ने तर्क दिया कि जब हीरो का किरदार ही साउथ इंडियन है तो वो गाने शुद्ध हिंदी में कैसे गाएगा। बाला सुब्रमण्यम की आवाज में साउथ इंडियन टोन फिल्म और गाने दोनों को ही ऑथेंटिक बनाएगा, और एस बी बाला सुब्रमण्यम ने आवाज़ का ऐसा जादू बिखेरा कि उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। श्रोताओं, फिल्म के जो डायरेक्टर थे के बालाचंद्रन, राज कपूर को बहुत पसंद करते थे। वह अपनी फिल्म पूरी करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसे राज कपूर को ही दिखाया। उन्हें पूरी फिल्म तो अच्छी लगी, लेकिन वो चाहते थे कि फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो। उन्होंने ये बात बालाचंद्रन को कही, लेकिन बालाचंद्रन ने मना कर दिया और बोला, जो टीस या जो दर्द आपके मन को परेशान किए हुए है, वही टीस वही दर्द जब दर्शकों के मन में भी उठेगी तो फिल्म सुपर हिट होगी। तो श्रोताओं, चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक छोटा सा संदेश।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: श्रोता तो हम आपको बता दें कि जब ये फिल्म बनके तैयार हुई तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नुकसान हो जाने के डर से ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था, तो प्रोड्यूसर लक्ष्मण प्रसाद को खुद ही एक दूजे के लिए रिलीज करनी पड़ी। फिल्म से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए शुरुआत में कुछ ही प्रिंट्स निकले, लेकिन हफ्ते भर में ये फिल्म का क्रेज इतना बढ़ा कि नए प्रिंट्स जोड़ने पड़े। महज 10 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ से ज़्यादा कमाए। इतना ही नहीं, एक दूजे के लिए पूरे 2 साल तक सिनेमाघरों में लगी रही और नेशनल अवार्ड समेत 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दिलों पर भी राज किया। वासु और सपना की प्रेम कहानी, लैला मजनू, हीर रांझा जैसे क्लासिक लव स्टोरीज की लिस्ट से जुड़ गए। हालांकि फिल्म का अंत बहुत ही इमोशनल था और कई दर्शकों की आंखें नम हो गई थी, लेकिन यही तो है असली सिनेमा की खूबसूरती, जो हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है। तो श्रोताओं, हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, तो ये आखिरी गीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं आपके जो मेल आए हैं उनको। ये मेल आया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल और विलिस का, और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित गोस्वामी, रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, और इनके साथ हैं पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, और स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुलराल और अविराज जी हैं गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर ये जुड़े हुए हैं जालंधर पंजाब से। तो श्रोताओं, अगला गीत जो है और कार्यक्रम का जो आखिरी गीत है, आइए उसे सुनते हैं। और ये जो गीत है, इस गीत में सबसे मजेदार बात यह है कि इसके जो बोल हैं सिर्फ हिंदी फिल्मों के नाम से तैयार किए गए हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम।
2: तो दोस्तों ये थी हमारी आज की फिल्म एक दूजे के लिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन 3 बजे फिर से मिलना नहीं भूलिएगा मैटनी मेलोडीज में।

0: टेस्ट मैच खेडेगी। मैच भारतीय समय मुताबिक दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। यह पहली बार है जदों लॉर्ड्स मैदान च महिलावां दा टेस्ट मैच खेडिया जाएगा। इस 4 रोजा टेस्ट मैच विच रिकॉर्ड 33,000 तो वध लोगों ने पहला ही सीटां बुक करवा लिया ने। आखिर च खास खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिना दौरे के तीजे ते आखिरी गेट च अज न्यूजीलैंड पहुंचणगे। पंजाब विच विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया लई सूबे भर के सारे पोलिंग बूथां ते कल तो 2 दिना विशेष कैंप का आयोजन होगा। मौसम विभाग वालों अज उत्तराखंड विच भारी मीह लई अलर्ट जारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अज लंडन च मेजबान इंग्लैंड खिलाफ दोपहर बाद 3:30 बजे इतिहासक इको एक टैसट मैच खेडेगी। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
1: आदा, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलयकार करार दिया है। IMD ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा ओलंपिक कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच गए हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़श्ता 2 साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और इंतहाई अहम दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस तरह उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे दिफाई शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल की राह हमवार कर दी है। आला इख्तियाराती दफ्तरों से लेकर मशहूर जगह तक के इस दौरे से दोनों बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और सलामती से मुतालिक ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज की इस बातचीत से जामे इक्तसादी तआवुन के मुआहदे CECA से मुतालिक मुज़ाकरात की रफ्तार में तेजी आएगी। इस दोतरफा बातचीत में माहौल के लिए साजगार तवानाई पर खास तवज्जो दी गई है, जिसके तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई के लिए बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। इस तरह 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क का इयादा किया गया है। बातचीत में दिफाई सलामती पर भी खासतौर पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि दोनों समंदरी मुल्कों ने दिफा और सलामती से मुतालिक तआवुन नीज एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए समंदरी सलामती के इश्तराक के खाके को भी मुश्तरका ऐलानिये की शक्ल में मंजूर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने जनाब मोदी को अपने मुल्क का एक सच्चा दोस्त करार दिया। उन्होंने बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन यूरेनियम बरामदात जैसे बुनियादी इकदाम की हिमायत की। यह दौरा मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलों की सिफारतकारी की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलकूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेलकूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जैसा कि भारत 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों और ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। तफसील हमारी नामनिकार से।
2: इस यादगार सरकारी दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की वजह से महज सिफारती सरगर्मियों ने मजबूत और कसीर सतही इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके तहत सनती कारोबार

पहुंच गए हैं, वो न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलाएकार करार दिया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
4: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक

0: ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष फल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश सोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News on AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर

बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर निधि वर्मा। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं ये तो हम आपको बताएंगे, इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये अंदाजा आप जरूर लगाइएगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं।

0: इस गीत के बाद कुछ लोगों ने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को सिनेमा में जुबान दी, जिन्होंने भोपाल की मिट्टी से उठकर बॉलीवुड तक अपना नाम लिखा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है एक ऐसे भारतीय हिंदुस्तानी कवि और गीतकार की जिनका नाम है असद भोपाली। इनका जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खान के पुत्र के रूप में हुआ था। असद भोपाली का असली नाम असदुल्लाह खान था। बचपन से ही शायरी का शौक मुशायरों में पढ़ते थे, लेकिन उनकी यही लगन उन्हें मुंबई खींच लाई। 50 के दशक में मुंबई आए, जेब में शायरी थी और दिल में सपने।
1: जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
2: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: शरारती, ये जो फूलों की बेलें नजर,
1: अज़र साहब ने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, गीत लिखते लेकिन लोग सुनते नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद फिल्मी दुनिया ने उन पर बहुत भरोसा करना शुरू कर दिया और उनकी

अंदर सबको एक कलाकार नजर आने लगा। असद भोपाली साहब को पहला ब्रेक 1958 में आई फिल्म मुजरिम से मिला। 60 और 70 का दशक असद भोपाली साहब के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। राज कपूर, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र सबकी फिल्मों के लिए लिखा। असद साहब की खासियत थी उनकी शायरी। उनकी शायरी बहुत आसान थी, कोई भारी लफ्ज नहीं थे, सीधे दिल में उतर जाती थी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार, और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं असद भोपाली साहब। असद भोपाली साहब ने फिल्मों के अलावा बहुत बड़े शायर भी थे और मुशायरों की जान थे। असद साहब दोस्तों की महफिल में बैठकर घंटों शायरी किया करते थे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। बात हो रही है असद भोपाली की, तो असद भोपाली साहब, भोपाल से मोहब्बत उनकी आखिरी दम तक रही। भले ही वे मुंबई में रहते थे, पर कहते थे कि मेरी जुबान में भोपाल बसता है। 1989 में आई हिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए असद साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

जिंदगी के आखिरी सालों में असद साहब बीमार रहने लगे। 9 मई 1990 को मुंबई में उनका निधन हो गया। आज भी जब दुनिया बनाने वाले गीत बजता है तो असद भोपाली साहब हर किसी को याद आ जाते हैं। उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों के लिए लिखा और कई अवार्ड जीते। तो दोस्तों, ये थी असद भोपाली साहब की कहानी, भोपाल के एक लड़के से लेकर बॉलीवुड के माने हुए गीतकार तक का सफर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी निधि वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, आज साल 2026 में हमारे पास बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और दिल की बात कहने के लिए इमोजीज हैं। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए, आज से 60 से 70 साल पहले यानी 1950 और 60 के दशक में जब ये सब नहीं था, तब लोग प्यार कैसे करती थी, उनके दिल की बातें कहाँ होती थी। आज मैटिनी मेलोडीज के इस बेहद खास शो में मैं आपको लेकर चलूंगी उन 6 खास ठिकानों पर जो 50 और 60 के दशक के रोमांच की जान हुआ करते थे। तो चलिए यादों के इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ और चलते हैं हमारे पहले ठिकाने पर। आज का हमारा पहला ठिकाना है घर की खिड़की। आज जब किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रोफाइल देखते हैं, लेकिन 50 और 60 के दशक में ना प्रोफाइल थी, ना स्टेटस, ना ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर। उस दौर का सोशल मीडिया थी घर की एक छोटी सी खिड़की, गली के मोड़ पर बने उस घर की लकड़ी की खिड़की। जिस दिन खुल जाए, आशिक का पूरा दिन बन जाता था, और अगर पर्दा जरा सा हिल जाए तो समझिए दिल की धड़कन दोगुनी हो जाती थी। सारा रोमांस उस एक खिड़की के इर्द गिर्द घूमता था। बिना एक शब्द बोले सिर्फ खिड़की से मिलने वाली एक नजर दिल के तार छेड़ देती थी। तो आइए सुनते हैं उसी शर्मीली खिड़की और आंखों के इशारों को बयां करता ये बेहद खास सॉन्ग।

0: मस्ताना।
1: जी हाँ दोस्तों, ओ निगाहें मस्ताना। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे ठिकाने की, जो कोई जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। वो एहसास है चिट्ठी। आजकल तो हम दिल की बात टाइप करते हैं और एक सेकंड में सेंड कर देते हैं और सामने वाले के लास्ट सीन का इंतजार करते हैं, लेकिन उस दौर में नीले रंग के अंतर्देशी पत्र या पोस्टकार्ड पर स्याही से दिल का हाल लिखा जाता था। कई बार एक चिट्ठी लिखने में पूरा दिन निकल जाता था। एक एक शब्द को सोचकर मोतियों की तरह सजा कर लिखा जाता था और कभी कभी तो उस कागज पर इत्र भी छिड़का जाता था। और उस चिट्ठी को पोस्ट करने के बाद इंतजार का असली मतलब था डाकिये की साइकिल की घंटी, और जब जवाब आता था तो उसे एक बार नहीं कई कई बार पढ़ा जाता था। इस इंतजार में जो मीठा दर्द था वो आज की जनरेशन कभी महसूस नहीं कर पाएगी। आइए सुनते हैं कागज पर लिखे उसी प्यार की एक बेहद सुरीली धुन। ये गीत लिया है हमने फिल्म कन्यादान से।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। और देखिए, सच बात है, आज वो खत तो नहीं है पर उस खत की महक आज भी इन गानों में जिंदा है। अब चलते हैं हमारे तीसरे ठिकाने की ओर। वो ठिकाना है घर की छत। 50 और 60 के दशक में घरों की छतें सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए नहीं होती थी, वो मुलाकातों का सबसे महफूज ठिकाना था। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता था, तब छत पर जाकर पतंग उड़ाने के बहाने या बालों को सुखाने के बहाने जो दो दिलों की नजरें मिलती थी, वो भी कमाल था। और रात के वक्त तारों की छाओं में चांद को गवाह मानकर जो खामोश बातें होती थी, उनकी बात ही कुछ और होती थी। आइए सुनते हैं उसी छत के रोमांस को समेटे हुए ये बेहद लाजवाब सा गीत।

हिंदी प्रेस चैनल पर आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो चलिए बात करते हैं हमारे चौथे ठिकाने की, जो हर लड़की के कमरे का सबसे बड़ा राजदार होता है, और वो है आईना। प्यार में सबसे पहले बदलाव चेहरे पर दिखाई देता है और उस बदलाव का पहला गवाह होता है आईना। वो बार बार बालों को सवारना, आईने में खुद को ही देखकर मुस्कुरा देना और फिर शर्मा जाना। आईने के सामने की गई वो बातें उस दौर के रोमांस का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। तो आइए सुनते हैं आईने के सामने बीते उन हसीन पलों की याद दिलाता ये एक बेहद मीठा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, मैं तो सज गई रही सजना के लिए। तो देखिए, प्यार में दर्पण का, आईने का कितना बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उसी के सामने हम सब कुछ अपने मन की बात कह देते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे पांचवें ठिकाने की तरफ। पांचवा ठिकाना है हमारा शाम की सैर और फुटपाथ। आज डेट का मतलब कैफे, मॉल या रेस्टोरेंट हो सकता है, लेकिन उस दौर में सबसे खूबसूरत डेट होती थी शाम के वक्त सड़क के किनारे फुटपाथ पर धीरे धीरे साथ चलना। हाथों में हाथ नहीं होते थे, ना कोई सेल्फी ना कोई फोटो, बस साथ साथ चलते हुए कुछ बातें, कुछ खामोशियां और ढेर सारी धड़कने, हवा का चलना, पेड़ों से पत्तों का गिरना और उस रास्ते का कभी खत्म ना होना, यही दुआ होती थी दोनों दिलों की। तो आइए चलते हैं उसी शाम की सैर पे, धीमी रफ्तार की उस मोहब्बत के साथ।

0: सोए सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए। कोई था उन पे निसार हो गया, जी प्यार हो गया।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं आपके मेल आ गए हैं, मैं उन्हें पढ़ लेती हूँ। ये मेल आया है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का और इनके साथ हैं वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, किशनगंज बिहार से रवि मोहनदास आशा देवी और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं हमारे इस सुहाने सफर के आखिरी और सबसे रोमांटिक ठिकाने का। वो एक काला छाता दोस्तों, आज की बारिश में लोग भीगने से बचने के लिए तुरंत कैब बुक कर लेते हैं, लेकिन 50 और 60 के बारिश का सबसे बड़ा सहारा था वो एक काला छाता। जब अचानक तेज बारिश शुरू होती थी और दो लोग उस एक छोटे से छाते के नीचे आ जाते थे, तो वो छाता पूरी दुनिया से अलग उनका एक छोटा सा मखमली कोना बन जाता था और दिलों की दूरी भी कम हो जाती थी। शायद इसीलिए पुरानी फिल्मों में बारिश सिर्फ मौसम नहीं, मोहब्बत का दूसरा नाम थी। तो चलिए सुनते हैं उसी छाते के नीचे पनपती मोहब्बत का ये अमर तराना।

तो श्रोताओं, आज के मैटिनी मेलोडीज में बस इतना ही। इसको, इन खूबसूरत और मासूम एहसासों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिएगा। अगले शो में कुछ और ऐसी ही बातों के साथ वापस आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए। खुश रहिए और मस्त रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

समयन अभी आप सुन रहे थे चंचल भारती और साथियों से ये कव्वाली। और समयन हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे पर, यानी आलमी यौमे तवानाई खुद मुख्तारी पर। इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा पैगाम है खुद इनहसारी, यानी सेल्फ डिपेंड। कोई भी मुल्क या खित्ता जो बाहर से तेल और गैस दरामद करने के बजाय अपने कुदरती माहौल से बिजली या ईंधन को पैदा करता है, वो ज़्यादा महफूज रहता है। इससे बैरूनी दबाव, कीमतों के उतार चढ़ाव का खतरा कम होता है। यानी हर मुल्क अपनी तवानाई की ज़रूरियात ज़्यादा से ज़्यादा अपने वसाइल से पूरी करे। इसके अलावा एक बुनियादी मकसद इस दिन को मनाने का ये भी है कि माशी इस्तेकाम यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रोज़गार के मौके पैदा होना। काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी से नए रोज़गार पैदा होते हैं। ये दिन हुकूमतों और इदारों को इस बात की तरगीब देता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी और पॉलिसियों को फ़रोग दें जो तवील मुद्दत के लिए सस्ती और पायदार हों।

0: आकार।
1: तो श्रोताओं सबसे पहले जान लेते हैं आज क्या है खास कार्यक्रम में। आज रोज की तरह फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी रोमांचक जानकारियां तो होंगी ही, साथ ही साथ क्रिकेट की बात करेंगे जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा T20 मैच भी होगा, और इस वक्त विमेंस क्रिकेट में जो टेस्ट मैच चल रहा है उसकी लाइव अपडेट भी हम कार्यक्रम के दौरान आपको देंगे। विंबलडन 2026 में क्या है खास वो जानेंगे, और आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 में कौन कौन से खिलाड़ी जो है आगे तक पहुंचे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। शूटिंग की बात करेंगे, U23 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या रहा खास वो जानेंगे। मोनेको डायमंड लीग में एक भारतीय, एक सिंगल भारतीय यानी कि एक अकेला खिलाड़ी जो है सर्वेश कुशहारे वो पहुंचे हैं और उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। साथ ही साथ U19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के साथ विमेन्स हॉकी और रेसलिंग भी होगा।

तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं क्रिकेट से, क्योंकि महिला क्रिकेट में इस वक्त भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है और भारत इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा है। 25 ओवर का मैच हो चुका है, लंच ब्रेक है इस वक्त और भारत 3 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना चुका है। और स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डाले तो स्मृति मंधाना बैटिंग कर रही हैं, जिन्होंने 56 रन बना लिए हैं। शेफाली वर्मा आउट हो चुकी हैं 0 पर और यास्तिका भाटिया 12 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं और जमीमा रॉड्रिक्स भी 35 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं। और स्मृति मंधाना के साथ इस वक्त बैटिंग कर रही हैं हरमनप्रीत कौर।

0: इंग्लैंड के ब्रिस्टल से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया है और श्रृंखला में 3-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही मेजबान टीम ने श्रृंखला भी अपने नाम कर ली है। मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। ब्रिस्टल की उछाल भरी पिच पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी आउट कर दिया। मुश्किल परिस्थितियों में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अय्यर ने 49 गेंदों में नाबाद 80 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल रहे। उनकी संघर्षपूर्ण पारी के बदौलत भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। हालांकि यह लक्ष्य इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने काफी छोटा साबित हुआ। भारत को शुरुआती सफलता तब मिली जब अर्शदीप सिंह ने जॉस बटलर को केवल 8 रन पर आउट कर दिया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बनाए रखा। हैरी ब्रूक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए केवल 35 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए, जबकि फिल सॉल्ट ने दूसरे छोर से नाबाद 59 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 146 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने महज 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और 37 गेंद शेष रहते हुए भी मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच बनाए गए। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने इतिहास भी रच दिया है। यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एक से अधिक मैचों वाली द्विपक्षीय T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला अपने नाम की है। अब आइए सुनते हैं इस मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कहा।
1: This is the transition phase and we will be making a lot of mistakes. Definitely 158 wasn't the perfect total on the board and eventually we saw how quickly they chased down. We fell a bit short in terms of our execution. Definitely happy with my performance, but see, if it's not on the winning cause, it just goes to the side. So disappointed on that aspect because whenever I play, I want to perform and see to it that my team wins. But unfortunately, today wasn't that day. Definitely look forward in the next game.

फ्रांस ने फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार अपनी जगह पक्की कर ली है। बोस्टन स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर उसकी ऐतिहासिक अभियान का अंत कर दिया है। मुकाबले का पहला हाफ काफी रणनीतिक रहा। फ्रांस ने शुरुआत से ही गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और माइकल तथा देजीरे के जरिए लगातार मोरक्को के डिफेंस पर दबाव बनाया। इसका फायदा फ्रांस को 26वें मिनट में मिला, जब नुसैर की चुनौती के बाद केलियन एम्बापे को पेनल्टी मिली। हालांकि

0: मोरक्को के गोलकीपर यासीन ने शानदार बचाव करते हुए एम्बापे की पेनल्टी रोक दी और हाफ टाइम तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने धैर्य बनाए रखा और आखिरकार 60वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली। एम्बापे ने बॉक्स के बाहर से अंदर की ओर बढ़ते हुए शानदार शॉट लगाया जो सीधा गोल पोस्ट में गया। इसके केवल 6 मिनट बाद फ्रांस ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। इस बार एम्बापे ने 2 रक्षकों को अपनी ओर खींचते हुए उस्मान को शानदार पास दिया जिसे डेम्बले ने गोल में बदलकर फ्रांस को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी। मोरक्को ने अशरफ हकीमी के जरिए वापसी की कोशिश की लेकिन फ्रांस की मजबूत रक्षा पंक्ति ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और टीम ने क्लीन शीट के साथ मुकाबला अपने नाम किया। इस शानदार जीत के साथ फ्रांस अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की इस शानदार जीत के बाद अब उसका सामना आगे होगा स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की विजेता टीम से। तो इसी मैच के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेन इस मुकाबले में शानदार लहर के साथ उतर रहा है। टीम पिछले 36 प्रतिस्पर्धा मुकाबलों से अजय है। मौजूदा टूर्नामेंट में स्पेन का प्रदर्शन रक्षात्मक मोर्चे पर भी बेहद प्रभावशाली रहा है और टीम ने लगातार 5 मैचों में क्लीन शीट दर्ज की है। स्पेन की मजबूत रक्षा पंक्ति में 19 वर्षीय पाओ क्यूबार्सी का प्रदर्शन शानदार रहा है जबकि मिडफील्ड में रोड्री ने अपना अनुभव और संयम टीम को मजबूती के साथ दिया है। स्पेन एक बार फिर अपने पारंपरिक अधिक गेंद पर नियंत्रण रखने वाले खेल के साथ मैदान पर उतरेगा। वहीं आक्रमण में युवा स्टार लामिन यामल विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जा रहे हैं। हालांकि बेल्जियम को कमजोर आंकना बड़ी भूल होगी। मुख्य कोच रूडी गार्सिया के मार्गदर्शन ने टीम को टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। सेनेगल के खिलाफ अतिरिक्त समय तक चलने वाले इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 में अमेरिका को 4-1 से हराकर मजबूत दावेदारी का प्रदर्शन किया। हालांकि इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले बेल्जियम को बड़ा झटका भी लगा। मिडफील्डर अमादू ओनाना ACL चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब टीम की रचनात्मक जिम्मेदारी अनुभवी केविन डी ब्रुयने और शानदार फॉर्म में चल रहे चार्ल्स के पास है। कुल मिलाकर यह मुकाबला 2 अलग अलग रणनीतियों की दिलचस्प टक्कर होने वाला है। एक और स्पेन अपने गेंद पर नियंत्रण रखने वाले खेल के दम पर मैच में पकड़ बनाना चाहेगी जबकि दूसरी ओर बेल्जियम तेज काउंटर अटैक के सहारे जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। लॉस एंजेलिस स्टेडियम में होने वाले इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का फुटबॉल प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है।
1: एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए गुरुवार को पहले ही दिन 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक अपने नाम किए और आज भी एक पदक भारत की झोली में आया है जो शकील ने लिया है 800 मीटर में और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। तो अब कुल मिला के भारत के 6 पदक हो गए हैं। भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने जीता। आस्तिक प्रधान, सेंड्रा मोल साबू, सेतु मिश्रा और श्रावणी सचिन सांगले की भारतीय चौकड़ी ने 3:18.64 का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह दिन का भारत के लिए आखिरी इवेंट था। भारत का पहला पदक भरतप्रीत सिंह ने दिलाया जिन्होंने पुरुष डिस्कस थ्रो में 52.91 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। चीन के ली जिक्जिन ने 60.79 मीटर के साथ स्वर्ण और उन्हीं के देश के जियांग हियाओ ने 59.60 मीटर के साथ रजत पदक जीता। पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में भारत ने 2 पदक हासिल किए। शिवाजी परशुराम ने 14:08.19 के समय के साथ रजत पदक जीता जबकि विनोद सिंह ने 14:23.67 की दौड़ पूरी कर कांस्य पदक अपने नाम किया। जापान की रुई सुजुकी ने समय रहते स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। दिन का 5वां पदक प्राची देवधर ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में जीता और उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में चीन की यांग यितिन ने स्वर्ण पदक और लियो युस्किन ने रजत पदक अपने नाम किया। एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले संस्करण में भारत की ओर से 53 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और पहले दिन के प्रदर्शन के साथ भारतीय दल ने प्रतियोगिता में दमदार शुरुआत की है और 6 मेडल अपने नाम किए हैं। और अब एक बार मेडल टैली पर नजर डाल लेते हैं। मेडल टैली पर सबसे ऊपर इस वक्त है चाइना, 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। जापान दूसरे स्थान पर है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। भारत 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। मलेशिया की बात करें तो 1 गोल्ड है मलेशिया के पास और मलेशिया चौथे स्थान पर है। उज्बेकिस्तान 5वें स्थान पर है, 1 भी गोल्ड उज्बेकिस्तान की झोली में नहीं है लेकिन 2 सिल्वर जरूर उज्बेकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। और अब बात कर लेते हैं विंबलडन की।
0: अब बात करते हैं टेनिस की, जहां विंबलडन 2026 में इतिहास रचने वाले मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। महिला एकल वर्ग में फाइनल की तस्वीर साफ हो चुकी है, जबकि जूनियर वर्ग में भारत के युवा खिलाड़ी अर्णव ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला एकल वर्ग की, जहां फाइनल में इस बार 2 शेक खिलाड़ी आमने सामने होंगी। कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि वर्ष 2009 के बाद यह पहला अवसर होगा जब विंबलडन महिला एकल फाइनल में एक ही देश की 2 खिलाड़ी आमने सामने होंगे। अब अगर सेमीफाइनल की बात करें तो पहले सेमीफाइनल में 10वीं वीरियता प्राप्त कैरोलिना ने विश्व नंबर 7 कोको गॉफ को रोमांचक 3 सेटों के मुकाबले में 6-2, 1-6 और 7-6 से हराया। निर्णायक सुपर टाई ब्रेक में मुचोवा ने मैच पॉइंट बचाते हुए शानदार जीत दर्ज की। आइए जानते हैं कि अपनी इस जीत पे कैरोलिना का क्या कहना है।
2: It was really nerve-wracking. It was roller coaster of emotions up and down. I was just trying to tell myself to keep hitting, to keep going forward, going for my balls and not just like waiting and putting the ball. Honestly, when I was match point down, I was like, okay, if I'm going to lose, I want to lose on my own. That was the only thing I was trying to keep in my head. I lost 6 on the hard court and I won on a clay and on the grass. So I felt like it was 0-0 on those surfaces. It's different. Maybe I put up a better fight, I would say, but she's, you know, it's always tough to play her. She's unreal athlete. She always gives that one point back, give her even a glimpse of a chance because she just takes it and then you're on the roll on the other side. So I'm happy I managed to win the 3 setters last 2 meetings.
0: अब अगर बात करें दूसरे सेमीफाइनल की तो 9वीं वरीयता प्राप्त लिंडा ने यूक्रेन की मार्ता को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल सुनिश्चित किया। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में मुचोवा ने नाओमी उसाका को और नोस्कोवा ने मेडिसिन को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई थी। यह दोनों ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है ग्रैंड स्लैम जीतने का और जहां वो अपनी ही देश की खिलाड़ी के सामने उतरेंगी। इसी बात पर लिंडा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
3: इट्स नॉट गोना बी इजी, यू नो, प्लेइंग अगेंस्ट अ फ्रेंड, इट्स नेवर इजी। आई हैव प्लेड अगेंस्ट माय गुड फ्रेंड्स अ कपल ऑफ टाइम्स एंड It's a horrible feeling, but this is a Grand Slam final, so I don't think that either of us will hold back.
0: अब बात करते हैं भारतीय युवा टेनिस खिलाड़ी अर्णव पपराकर की। हालांकि अर्णव का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया लेकिन उन्होंने भारतीय टेनिस इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। 18 वर्षीय अर्णव विंबलडन बॉयज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले 36 वर्षों में पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि वर्ष 1990 में लिएंडर पेस ने हासिल की थी। क्वार्टर फाइनल में अर्णव का सामना अमेरिका के क्वालिफायर जॉर्डन ली से हुआ जहां उन्हें 6-2 और 7-5 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका अभियान यहीं समाप्त हुआ लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने भारतीय टेनिस के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं। अर्णव की इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है भारतीय खिलाड़ियों का विंबलडन जूनियर इतिहास। आपको बता दें कि वर्ष 1953 में रमनाथन कृष्णन बॉयज सिंगल्स के उप विजेता रहे थे। इसके बाद 1954 में उन्होंने खिताब अपने नाम किया। वर्ष 1979 में रमेश कृष्णन और 1990 में लिएंडर पेस ने बॉयज सिंगल्स का खिताब जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। अब 2026 में अर्णव पपराकर ने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। अब आपको

0: मानसून में कुछ स्किन कंडीशंस है जो एग्रेवेट होती है, जैसे एक्जिमा है, एक्ने है, मुहासे जो होते हैं वो एग्रेवेट होते हैं, ठीक है, पसीने की वजह से, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन से, उसकी वजह से बढ़ सकते हैं। और कुछ कंडीशंस होती है जो कि आपके इसी मौसम में देखे जाते हैं, जैसे बोला मैंने हीट रैश, तो ये नहीं है कि आपका फंगल इन्फेक्शन केवल इसी मौसम में दिखाया जाए, इस मौसम में बढ़ जाते हैं। अब ऐसा सिनेरियो आ गया कि फंगल इन्फेक्शन तो हर मौसम में हमें देखने को मिलता है, बट इस मौसम में ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर कि अगर इन जनरल हम बारिश के मौसम की बात करें तो स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें तो हम इन त्वचा की समस्याओं को थोड़ा दूर रख सकते हैं?
0: कि सबसे पहली बात है कि मौसम के अकॉर्डिंग आपको रखना है, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। आप खान पान अच्छा रखोगे तो स्किन की हाइड्रेशन भी चाहिए, पानी उचित मात्रा में ले। और दूसरी चीज ये कि कपड़ों का जरूर ध्यान दे, क्योंकि इस मौसम में पसीने की ज्यादा समस्या होती, तो क्लोथिंग वैसा पहने जो एब्जॉर्ब करे, या फिर जैसे कॉटन है लूज फिटिंग बोलते हैं हम, लूज फिटिंग पहने, बहुत ज्यादा टाइट या जो सिंथेटिक वाले होते हैं वो आपको अवॉइड करना है। अगर आपको लगता है कि

0: आपकी परेशानी जो है कपड़ों की वजह से भी कई बार आती है, ऐसा नहीं है तो आपको उस कंडीशन, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, जैसे बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, तो उस कंडीशन में हम ये एडवाइस करते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपको लूज क्लोथिंग होनी चाहिए, या किसी को पैर में एथलीट फुट जिसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन है, तो उसमें भी हम बोलते हैं कुछ टाइम के लिए आप शूज को एक्सक्यूज कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो, है ना, बहुत लंबे टाइम के लिए उसको पहनने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट खान पान का ध्यान रखें, स्वस्थ शरीर तभी रहेगा जब आपका मन भी ठीक रहेगा, तो आपका मन भी ठीक होना चाहिए, आप अच्छे से अपना ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो बाहर जाकर दवाई लेने की बजाय आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट या जो भी डॉक्टर है नियर बाय उनको जरूर दिखा लें।
1: तो श्रोताओं, बारिश के मौसम का आनंद तभी पूरा है जब हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी त्वचा को साफ रखें, सूखा रखें, पानी पीने का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा गीला होने से बार बार अगर बच सकते हैं तो बचें, भीगने के बाद कपड़े तुरंत बदलें, स्वच्छता बनाए रखें अपनी, और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी क्रीम या दवा ना लगाएं, ऐसा अभी अभी हमारे डॉक्टर ने भी बताया आपको। तो ध्यान रखिए और बारिश के मौसम का मजा लीजिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका हमारे स्टूडियोज में आने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मानसून में त्वचा रोग एवं बचाव। डॉक्टर सीमा, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आपको ये तमाम जानकारी दी। और आइए इसी के साथ ले चलते हैं, आपका मनोरंजन करवाते हैं और सुनाते हैं आपको मस्तराम यादव की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: सुन परवाने भरम मेट दो तेरा, ये रागनी आप सुन रहे थे मस्तराम यादव की आवाज में,
1: और ये रागनी आप सुन रहे थे रेडियो के माध्यम से। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियो जो एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ मनोरंजन का साधन
0: नहीं है, माध्यम है,
1: मनोरंजन का साधन नहीं और साथ ही एक जनसंचार और आपको जानकारी देने वाली चीज है।
0: जी हाँ, तो आप बात कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो की बात।
1: जी बिल्कुल, और इसे जैसे कि सामुदायिक रेडियो केवल एक मनोरंजन नहीं है बल्कि गांव की आवाज़ है। ये स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है।
0: जी हाँ, आप सही कह रही हैं शीतलबहन। ये दरअसल कम्युनिटी रेडियो का कंसेप्ट जो है ना, ये अवधारणा जो है सरकार इसीलिए लेके आई थी कि पूरे देश को, पहले इतना विकास नहीं था, गांव-गांव में पगडंडियां थी, रोड सड़क नहीं थे, एक दूसरे से जुड़ने का साधन नहीं था, चिट्ठी पत्री का दौर था। उस दौर में रेडियो लोगों का मनोरंजन करने का, लोगों तक संदेश पहुंचाने का, लोगों को
1: सरकारी योजनाएं बताने,
0: योजनाओं के बारे में जानकारी देने का और सारी चीज़ों का, इंफोटेनमेंट का, ये कह लीजिए कि एक माध्यम था जो पूरी तरीके से इस गुलदस्ते को, भारत के गुलदस्ते को, जिसमें कई तरह के लोग, कई तरह की संस्कृतियाँ, रस्म रिवाज हैं, कई मजहब धर्म के लोग हैं, उनको जोड़ने का काम किया।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आशु और दिलदार की आवाज में रागनी।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आशु और दिलदार की आवाज़ में ये रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम राम
0: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारा सर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले

0: प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को
1: राम राम,
0: राम। शीतल बहन और मैं शाहिद लेकर हाजिर हैं आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें लोकगीतों का ये महासंगम भी है और आपको बहुत सारी जानकारियां भी देंगे, सुझाव देंगे, सब्जी और मिलेट्स की बात भी करेंगे।
1: जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत तो आपने कर दी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फल सब्जी और मिलेट्स की बात करेंगे, तो श्रोताओं के लिए सबसे पहले यही बात कि

0: जो मौसम की सब्जी हैं सिर्फ उन्हीं का सेवन करें,
1: हाँ।
0: क्योंकि प्रकृति ने हमें वही सब्जियां और वही फल दिए हैं जो हमारी मौसम के अनुसार होते हैं। आप देखिए, गर्मियां होंगी तो हमें ऐसी सब्जियां मिलेंगी जिसमें ज़्यादा पानी हो, हमारे शरीर में पानी मिल सके, तोरई हो, घिया हो, इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फल भी ऐसे ही मिलते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, कुछ ना करें आप, बाहर का कुछ भी ऐसा ना करें कि हमें अलग से कुछ सलाह लेनी है, कुछ करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मौसम की सब्जी और फलों का सेवन करें।
1: शीतल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, ये सब्जी फल जीव जंतु ये जितने जितना भी ये कुदरत का ये पूरा जो करिश्मा है ना, ये करोड़ों साल का एक इवोल्यूशन का नतीजा है। और कुदरत ने हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बड़े करीने से उसको जो है कि तय किया है,
0: बिल्कुल सजा हमें, के दिया है। हाँ, हमें कुछ
1: किस
0: करने
1: मौसम
0: की
1: में कब खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे करना है, यहाँ के लोगों को क्या खाना है, रेगिस्तान वालों को क्या खाना है, पहाड़ में क्या खाना है, वो सारी चीजें बता रखी हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो फल सब्जियां हैं इनको बड़ा चुनिंदा तरीके से जो कुदरत ने दिया है उन्हीं को इस्तेमाल करें।
0: जी बिल्कुल। और श्रोताओं, जैसे कि आज के दौर में बदलती जीवन शैली जो है और उसके कारण जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आप देखते हैं आजकल शुगर बहुत आम हो गया है, मोटापा बहुत आम हो गया है, और आजकल तो आप देखेंगे कि हृदय की परेशानी जो आप देख रहे हैं, अटैक आप आए दिन सुनेंगे कि बहुत चलते फिरते इंसान गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई या कुछ, तो ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। अगर ऐसे ही यदि हम अपने दैनिक भोजन में फल सब्जी और मोटे सब्जियों के साथ मोटे अनाज को अगर शामिल कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा शीतल। ये जो मोटे अनाज जो है ना, इनका जब चलन खत्म हुआ है तभी से ये मोटापा, हाइपरटेंशन, बीपी ना, जो है कि शुगर, इस तरह के जितने भी रोग हैं ये सारे के सारे हमारी जीवन शैली के से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद ही आए हैं। इसलिए मिलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा
0: जरूरी है। शाहिद भाई, बातें हम मिलेट्स पे और भी अपने श्रोताओं से करेंगे, अभी फिलहाल अभी अपने श्रोताओं का करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं अशोक कुमार की आवाज में ये रागिनी।

0: माई मोर धरती बाबा कस्बा, ये किसान की एक पूरी जीवन शैली को, पूरे इसको कल्चर को बयां करने वाला एक लोकगीत अशोक कुमार की आवाज में आपने सुना।
1: और हम बात कर रहे थे फल सब्जी और मिलेट्स।
0: जी हाँ, मिलेट्स दरअसल मोटे वो अनाज जो कि पोषण से समृद्ध हैं, जिनमें तमाम तरह के मिनरल्स हैं। वो सारे मिनरल कमोबेश जो एक व्यक्ति को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलेट्स में मिलते हैं। मिलेट्स हैं क्या? वो ज्वार है,
1: ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सांबा।
0: जी हाँ,
1: ये जो मोटा अनाज,
0: बिल्कुल ये वो मोटे अनाज हैं जो अब कम पैदा किए जाते हैं। पहले जो है इन्हीं की पैदावार ज़्यादा थी, यही खाया जाता था, यही बोया जाता था, और उसका असर ये था कि जीवन हमारा जो है ना वो बड़ा समृद्धशाली था, रोगों से मुक्ति थी। रोग कभी कभार लोग जो है कि बीमार पड़ते थे, और अक्सर ये देखने को मिलता था कि लोग लंबी आयु, दीर्घायु जीते थे।
1: जी आप देखेंगे अक्सर पहले क्या होता था, पहले लोगों की आयु मतलब 90-95 साल बहुत आम होती थी, लोग 100 साल पार कर जाते थे। क्योंकि क्या होता है, मोटे अनाज में श्रोताओं तत्व जो होते हैं भरपूर होते हैं, चाहे वो फाइबर हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, सभी चीज़ मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि घर में खाए जाते हैं या इनकी रोटी मजबूरन बनाई जाती है। आप देखेंगे मिलेट्स के तो बहुत सारी चीज़ें, चिप्स है, मतलब बाजार में जो आप चिप्स और तरह तरह की चीज़ें जो देखते हैं ना, अलग अलग टेस्ट की, कि लोग आकर्षित होते हैं खाने के लिए, आपको मिलेट्स की भी भरपूर मात्रा में मिलेंगे।
0: खीर बना लो, रोटी बना लो, सत्तू बना लो, हर तरीके से। अच्छा, पहले ये खाया भी जाता था, वैसे इस्तेमाल होता था। इसकी वजह से, चूंकि ये एक संतुलित पोषण है, संतुलित पोषण लेना बहुत जरूरी है, वो शायद आज के लोग नहीं ले पा रहे हैं अपनी जीवन शैली के नाते। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मुहैया नहीं है, कम पैदा हैं लेकिन मिल रही हैं, और अभी तो जो है कि सरकार ने इस पर खासा जोर दिया है, तो इसकी पैदावार भी बढ़ रही है। तो बेहतर ये होगा कि हमारे भाई बहन जो है वो चाहे शहरों के हों चाहे गांवों के हों, मिलेट्स पे ध्यान दें। ये उनकी जीवन शैली को और उनकी दिनचर्या को बदल के ना, जैसे कि वो खुद बदलेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, और इससे

0: जुड़ा हुआ जो उनके अंदर एक कह लें कि कई तरह के रोग हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, वो शरीर की सारी चीज़ों को सुचारू कर देगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो है कि मधुमेह है, बीपी है और इस तरह की जो जीवन शैली वाली बीमारियां हैं उनसे धीरे धीरे निजात मिलेगी।
1: जी बिल्कुल। और क्या होता है, मोटा अनाज बहुत जल्दी पच जाता है और जो चीज़ जल्दी पच जाती है वो आपको कभी बीमार नहीं करती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं भूलन त्यागी की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो ग्रामीण भाइयों बहनों, हमारे किसान बहन भाई जो हैं, ये उनके लिए खास प्रोग्राम है। और हम बता दें कि ये अब जो मौसम है ना, मानसून का, जैसा आप शीतल बता रही थी, ये कैच द रेन का मौसम है।
1: जी बिल्कुल
0: ये हकीकत में एक नारा भी है जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। और हकीकत में ये पूरा जो नारा है वो ये है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, वेन इट फॉल्स।
1: जी
0: तो यानी जहाँ भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, तो बारिश की बूंदों को, पानी को सुरक्षित बचाइए, संचय करिए उसका। इसका मकसद ये है कि ये जो धरती है, ये जो हमारा हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो पानी के स्रोत हैं, उनको रिचार्ज करिए।
1: जी बिल्कुल। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन आने वाले समय में पानी की बहुत ही दिक्कत होगी। और आप जानते भी हैं कि जल है तो जीवन है।
0: बिल्कुल,
1: और अब बात हो रही है जल की, और बात ना हो मछली की तो बहुत ही अन्याय होगा।
0: अरे बिल्कुल, आपने याद दिला दिया, आज तो नेशनल फिश डे है।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: हाँ,
1: और जब हम पानी की बात करेंगे तो मछली को क्यों ना हम याद करें। हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली दिवस मनाते हैं। और चूंकि मछली बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है और उसमें बहुत पौष्टिक होती है, कई राज्यों में ये मुख्य आहार के तौर पे भी यूज किया
0: भाई
1: जाता है।
0: वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए ये आय का अतिरिक्त स्रोत है। और बड़ी चीज़ ये है ना कि हमारे कल्चर में इसको जो है कि खाद्य से अलग जो है ना, इसकी जो कह लें कि परंपराओं से जुड़ी जो इसका महत्व रहा है,
1: जी
0: ठीक है, इसको जो है कि मछली हो और चाहे जो है कि कछुआ हो, इसका जो है कि अलग ही महत्व है।
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक है,
1: आज देश के वैज्ञानिक, तकनीकों, सरकारी योजनाओं और किसानों की बढ़ती रुचि के कारण जो मछली का उत्पादन है ना, बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि इससे क्या है, हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है।
0: जी
1: वो खेती तो कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक उसमें ये मत्स्य पालन भी बहुत ही मुख्य आय का स्रोत है। तो चलिए,
0: हम जल संचय भी करते हैं और मत्स्य पालन करते हैं, तो इससे जो है हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों की, खास तौर से किसान भाइयों बहनों की
1: जी,
0: आमदनी बढ़ेगी, आय बढ़ेगा।
1: और उनके जो व्यक्ति स्तर है, उनका जो रहन सहन है, वो बहुत सुधार होगा।
0: जी हाँ, तो आइए अब आगे चलते हैं और आपका कराते हैं मनोरंजन।

0: हवा मिले। तो श्रोता सुन रहे थे सत्येंद्र यादव की आवाज में ये रागनी पर्यावरण की करो सुरक्षा। और यकीनन जो ये मौसम है और जो मानसून का मौसम चल रहा है तो पर्यावरण को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। एक पौधा आप जरूर, जैसे कि आजकल हमारी मुहिम चल रही है हमारे सरकार की तरफ से छेड़ी हुई है कि एक पौधा माँ के नाम, तो एक पौधा आप भी जरूर अपने किसी अच्छे दिन के लिए, जन्मदिन पे, किसी भी अच्छे मौके पे एक पौधा लगाएं। क्योंकि इस मौसम में अगर आप पौधा लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी पनपता है और बढ़ता है, क्योंकि इस समय जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और जड़ें बहुत जल्दी जम जाती हैं ज़मीन में और वो जल्दी उग जाता है। तो इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। कार्यक्रम के
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं गजल और कवाली, ये कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत सी गजलें।
1: एक तो ये कि भूपेंद्र के गीतों में वहां के अवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारे का सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया चंद खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए बस अब से कुछ ही पलों में सुने प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75 सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की। दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा पर बढ़ाई सख्ती। यातायात नियम तोड़ने पर इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए। और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से

0: के विकास और जनसेवा के संकल्प को नई शक्ति मिली है। दिल्ली भाजपा कार्यालय में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल हुए सभी पार्षदों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सामूहिक प्रयासों से राजधानी के विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए पार्षदों ने ये निर्णय लिया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।
1: केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज्यादा सुलभ है, ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में सभी मिलकर राजधानी की वर्षों पुरानी समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकते हैं और विकास कार्यों को नई दिशा दे सकते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा परिसर में संस्कृत महाकाव्य मंगल महर्षि चरितम का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन का प्रत्येक प्रयास देश के भविष्य में किया गया निवेश है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित भाषाओं में से एक है। इसकी तार्किक व्याकरणिक संरचना आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के दौर में भी प्रासंगिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। विश्व बैंक और पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 8,300 करोड़ रुपए का 7 वर्षीय कार्यक्रम राजधानी में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम की 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% योगदान दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर गति और दृढ़ संकल्प के साथ सतत विकास को गति दे रहा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। श्री जाधव ने 70 लाख से अधिक स्वदेशी और जलवायु प्रतिरोधी वृक्षों के प्रस्तावित वृक्षारोपण, 70 से अधिक जल निकायों के विकास और लगभग

0: 6000 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र घोषित करने की सराहना की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की है। इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल और एनजीओ एहसास के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में हुए इस समझौते के अंतर्गत आईजीएल अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर पहल के माध्यम से परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट।
1: यातायात पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए गए हैं, जबकि रेड लाइट और ओवरस्पीड उल्लंघन का पता लगाने वाली तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से 17,21,000 से अधिक ई चालान जारी किए गए हैं। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामलों में 2,187 FIR भी दर्ज की गई है। राजधानी में ट्रैफिक की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए 8 प्रमुख सड़क कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बना दिया गया है। अनावश्यक ट्रैफिक सिग्नल हटाने, यू टर्न की सुविधा देने और चौराहों को फिर से डिजाइन करने जैसे उपायों से इन रास्तों पर ट्रैफिक का प्रभाव बेहतर हुआ है। यातायात जाम को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर कश्मीरी गेट, आनंद विहार, आश्रम चौक, मजनू का टीला और अन्य प्रमुख स्थानों पर आधारभूत ढांचे में सुधार किए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हुई है। यातायात पुलिस ने कहा है कि इंजीनियरिंग सुधार, आधुनिक तकनीक, प्रभावी परिवर्तन और जन भागीदारी के माध्यम से राजधानी में सुरक्षित और यात्री अनुकूल यातायात व्यवस्था विकसित करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली परिवहन निगम DTC ने महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह स्मार्ट कार्ड आधारित बनाने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2026 से केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड धारक महिलाओं को ही DTC और क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस महीने के अंत तक ही कागजी पिंक टिकट जारी रहेगा। जिन महिलाओं के पास ये पिंक कार्ड नहीं होगा, उन्हें निर्धारित किराया देकर सामान्य टिकट लेना होगा। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की सुविधा बिना किसी बाधा के जारी करने के रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक 15 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दक्षिण दिल्ली की महत्वपूर्ण मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके विकास की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी को लिखे पत्र में कहा कि लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा मांडी रोड दिल्ली NCR का महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क गलियारा है। ये मार्ग छतरपुर मेट्रो स्टेशन के निकट महरोली गुरुग्राम रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 148A को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सड़क दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच अंतर्राज्यीय यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है। चांदनी चौक नागरिक मंच ने दिल्ली सरकार द्वारा शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया है। मंच के महामंत्री और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पुरानी दिल्ली के नागरिकों और व्यापारियों की लंबे समय से ये मांग थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नाम परिवर्तन के साथ ही पुरानी दिल्ली के संरक्षण, विकास और रखरखाव के कार्यों को नई गति मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नजफगढ़ स्थित गोयला डेयरी

0: संपीड़ित जैव गैस सीबीजी प्लांट की प्रगति की समीक्षा की और पश्चिमी जोन की प्रमुख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की साइबर सेल ने नकली दवाओं के निर्माण और अंतर्राज्यीय आपूर्ति से जुड़े एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी इस गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता था। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच दक्षिण दिल्ली में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आज दक्षिण जिले की दिशा समिति की बैठक भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली सरकार, नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अधिकारियों ने बताया कि जलभराव से निपटने के लिए नालों की गाद हटाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। ये वार्षिक महोत्सव अनानास उत्पादकों को उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, खाद्य व्यवसायों और निर्यात बाजारों से जोड़ने का राज्य का प्रमुख मंच बन गया है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम व्यापार को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक स्तर पर किसानों की क्षमताओं को नई गति प्रदान करते हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे कई दशकों तक आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहे। उन्होंने देश विदेश में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हुए रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक बजकर 8:00 ये लीजिए पूरे हुए 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, और इस क्रम में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और उम्मीद करते हैं ये जो गीत हम पिरोकर लाए हैं, ये सभी नगमे जो हैं आप सभी को पसंद आएंगे। तो आइए गीत मालिका का आगाज करते हैं लता जी की आवाज में गाई एक खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम, कार्यक्रम रहा गीतमालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत

0: बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये प्राकृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण,

0: शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने

0: भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busedi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हममनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हममनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके दो रोजा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोश व खरोश से भरा हुआ था, क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिले दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्रयाजमों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर

0: आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाकई कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेज ने शिरकत की ताकि मुस्तकबिल के सहेली गार्ड्स प्लेटफॉर्म्स पर गौर खौस किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई, जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हमनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हमनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलों पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारी का जायजा लिया और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव बर्तानिया के खिलाड़ी आर्थर फेरी को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: اینجا دهلی است. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 شب به وقت هند برابر با ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه امشب ما عبارت خواهد بود از تلاوت قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس برنامه سرودهای محلی. و البته در آخر برنامه اخبار جهان را خدمتان پخش خواهیم کرد. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، این هم برنامه شامگاهی جمعه را خدمت شما با تلاوت قرآن مجید به راه می اندازیم.
2: شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

وكان أمرا مقضيا.

فأجاءها المخاض إلى

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश कर गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद ये जत्था आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी है। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा।

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे मैं आपकी दोस्त कीर्ति लेकर हाजिर हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, जी हां, ओल्ड हिल्नी सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म द ट्रेन के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत आर डी बर्मन का है और बोल आनंद बख्शी के हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस गीत को भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक बार कवर और रीमिक्स किया गया है, ये इतना सुपरहिट गीत है। तो चलिए मिलकर आनंद लेते हैं।

अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की बेहतरीन आवाज में, फिल्म मेरे अपने जो कि 1971 में आई थी। इस गीत को मशहूर गीतकार गुलजार ने लिखा था और इसका संगीत सलिल चौधरी ने तैयार किया था।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक गानों में से एक है। ये गीत 1973 की सुपरहिट फिल्म यादों की बारात का हिस्सा है और इस गाने को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। आरडी बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया था और आवाज आशा भोसले तथा मोहम्मद रफी ने दी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस गाने में गिटार की जो मशहूर धुन इस्तेमाल की गई थी उसे आरडी बर्मन ने एक कैनेडियन गीत हुश हुश स्वीट शार्लेट से प्रेरित होकर बनाया था।

अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं जो कि भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है और भारतीय सिनेमा के सबसे सदाबहार भाई बहन के गानों में से एक है। जी हाँ, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जो कि 1971 में आई थी, इसी फिल्म से आपको ये गीत सुनवाने जा रहे हैं। और ये गीत फिल्म में दो बार गाया गया था। पहला वर्जन लता मंगेशकर जी ने गाया था जिसे फिल्म में जीनत अमान पर फिल्माया गया, और दूसरा वर्जन किशोर कुमार ने जो देवानंद पर फिल्माया गया था। तो आपको सुनवाने जा रहे हैं हम किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

ये बहन भाई का गीत इतना सुपरहिट हुआ कि इस पंक्ति पर मुहावरा भी बन गया कि अगर बहन भाई की बात आती है तो सिर्फ यही लाइन आती है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। खैर, अब अगला गीत जो आपके लिए आ रहा है वो जिंदगी पर है। जी हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, फिल्म अंदाज से हिंदी सिनेमा का सदाबहार गीत है और इसे किशोर कुमार ने गाया है, बोल हजरत जयपुरी ने लिखे थे और ये गीत राजेश खन्ना हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। आइए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के बाद अगला गीत जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं वो है मुकेश की आवाज में फिल्म आनंद का। जी हाँ, और ये जो गीत है इसमें संगीत सलिल चौधरी ने दिया था और योगेश गीतकार जो हैं उन्होंने इस गीत को लिखा था। और दोस्तों आपको बता दें इस गीत के पीछे की एक छोटी सी बात, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने जानबूझकर लेखक गुलजार को निर्देश दिया था कि वे फिल्म की शुरुआत इस गाने से करें ताकि दर्शकों को तुरंत पता चल जाए कि मुख्य किरदार आनंद की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। और यही तो एक कला है जो दर्शकों को इस पर

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: हाँ
1: क्या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। अगला गीत जो आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म सिलसिला से, जो कि 1981 में आई थी और बेहद लोकप्रिय गीत है देखा एक ख्वाब। दोस्तों, इसकी शूटिंग एम्स्टरडैम के मशहूर कुकेनहॉफ, ट्यूलिप गार्डन और कश्मीर के पहलगाम में हुई थी। ये गाना डॉक्टर करण सिंह की एक डोगरी एल्बम से प्रेरित है और आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग का लोकेशन खुद अमिताभ बच्चन ने सजेस्ट किया था, क्योंकि वे पहले भी वहां जा चुके थे। आइए सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत। संगीत शिवहरि का था और बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे।

ऐसे सदाबहार गीत सुनकर कई बार लगता है कि काश वक्त यहीं रुक जाए और इन गीतों के बाद जो समय आने वाला है वो ना आए और यही गीत हम हमेशा सुनते रहें। अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म मेरे नसीब से। और ये गाना 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब का है। जी हाँ, मनमोहन देसाई जो कि इस फिल्म के निर्देशक थे। इस गाने की धुन भले ही भारतीय संगीत पर आधारित थी, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिदम और क्लब सिंथ बीट्स का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि 1980 के दशक की शुरुआत में पारंपरिक संगीत और मॉडर्न डिस्को पॉप को जोड़ने वाला ये एक अनोखा गाना बन गया था। और दोस्तों, गाने के अंत में एक आवाज सुनाई देती है जो बैकग्राउंड डांसर्स का जोश बढ़ाने के लिए, दैट इज एवरीबॉडी कम ऑन, चिल्लाती है। ये आवाज किसी सिंगर की नहीं बल्कि खुद निर्देशक मनमोहन देसाई की थी, जिन्होंने गाने में एक कमर्शियल और वेस्टर्न एनर्जी जोड़ने के लिए ऐसा किया। आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब समय है इस कार्यक्रम के आखिरी गीत का, जो हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म शराबी से। और ये सदाबहार गानों में से एक है, 1984 में ये फिल्म आई थी। आइए सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमें एयर लाइव न्यूज 24x7 पर। और 2:10 पर गीत बहार कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया।

0: प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव JFF के 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ये फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमरीका और एशिया के देश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3 विकेट लिए, जबकि मैंडी विलियर्स और इसी वॉन्ग ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland yesterday, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian

0: इसी के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुतियों ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत

0: की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसम्बर से नागपुर में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में निधि कटौती के कारण लगभग 10 लाख महिलाएं आवश्यक मानवीय सहायता से वंचित रह गई हैं। संस्था ने कहा कि जनवरी 2025 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद विदेशी सहायता में की गई कटौती के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। अमरीका और अन्य प्रमुख दानदाताओं द्वारा सहायता में कटौती के कारण अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भी कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी है और दुनिया भर में कार्यक्रमों को सीमित करना पड़ा है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के विदेश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन और बेल्जियम के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमेरिका के इंगलवुड स्थित लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland yesterday, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology, and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Puisayawi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement, signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism, and counter-terrorism.
1: We will be building on the things that we've already worked on. So free trade agreement is signed, but it has to be ratified, and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So there are many, many aspects of it, including maritime security as well.
3: As India prepares to commission the indigenous stealth frigate Mahendragiri into the Indian Navy, Defence Minister Rajnath Singh has reaffirmed that India remains the primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. Addressing naval personnel during the Barakhana in Vishakhapatnam yesterday, he said the Indian Navy is playing a vital role in safeguarding the nation's maritime interests amid an increasingly complex global security environment. The Defence Minister said that growing geopolitical competition and the increasing presence of extra-regional powers have made maritime vigilance more important than ever. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Mabusaidi in Muscat yesterday and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime, technology, defence, and cyber and AI domains. The two leaders also held a comprehensive exchange of views on developments in the Gulf and efforts to ensure peace and stability in the region. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugam yesterday reviewed preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament will commence on 20th of this month and continue till the 13th of August. In a social media post, Mr. Meghwal said, a comprehensive review of the legislative business scheduled for the upcoming session was conducted and necessary guidelines were issued. Indian Railways has approved 206 crore rupees for Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The ministry said the provision of Kavach version 4.0 will be implemented on the Rewari Delhi and Shakurbasti Bhatinda sections of Delhi Division. The first batch of pilgrims undertaking the Kailash Mansarovar Yatra entered China yesterday through the Lipu Lake Pass in Pithoragarh district of Uttarakhand. After completing all necessary immigration and border formalities, officials of the Indo-Tibetan Border Police handed over the group to the Chinese authorities stationed at the border. In FIFA World Cup, Spain stormed into the semi-finals after defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, US. Both the teams were tied 1-1 at halftime. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल गीत कार्यक्रम। प्रातः के 4 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। माफ कीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: वीणा के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नाम कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में प्रस्तुति मिनी एन की।

अभी आप सुन रहे थे नाथ ब्रह्म कार्यक्रम में मिनी एन का राग कल्याणी।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, सक्षम वत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026 सुबह के 4:54 और 22 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी। 5:10

खबर सुनेंगे, आप कार्यक्रम आओ योग करें। माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का समय 5:20 है। आप सुनेंगे आओ योग करें कार्यक्रम। 5:10 पर देशभक्ति गीत हिंदी फिल्मों से आप सुनेंगे।

0: हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के उपरांत 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप राहुल संस्कृतायन के जीवन के प्रसंग सुनेंगे। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ प्रसारित होगा, जिसमें आप बालकांड का भाग 113 सुनेंगे। 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। सात बजकर 30 का समय संगीतिका कार्यक्रम का रहेगा। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये संक्षिप्त जानकारी थी। हम आपको बता दें 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। हिंदी समाचारों के उपरांत 5:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। वहीं न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन

0: के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। वहीं बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरने उत्पन्न खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों में निमंत्रण भेजा गया है। ये सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजलिस के इंगलवुड में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरुइन ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland today. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. Prime Minister Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Prime Minister Modi arrived in Auckland yesterday on the third and final leg of his three-nation tour after concluding his successful visits to Australia and Indonesia. In a special gesture, New Zealand Prime Minister personally received Mr. Modi at the airport. Members of the Indian community were also turned out in large numbers to accord him a warm welcome. Prime Minister Modi praised the Indian diaspora in New Zealand for preserving India's rich cultural heritage across generations and continents. In a series of social media posts, Mr. Modi also lauded the cultural performances presented during the community reception, saying that they reflected India's rich diversity and civilizational heritage. As India prepares to commission the indigenous stealth frigate Prahendragiri into the Indian Navy, Defence Minister Rajnath Singh has reaffirmed that India remains the primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. Addressing a naval personnel during the Barakana in Vishakhapatnam yesterday, he said, "The Indian Navy is playing a vital role in safeguarding the nation's maritime interests amid an increasingly complex global security environment." The defence minister said that the growing geopolitical competition and the increasing presence of extra-regional powers have made maritime vigilance more important than ever. He said the Indian Navy is securing India's maritime borders, protecting vital sea lanes and safeguarding the country's interests across the region. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his Omani counterpart Badr bin Ahmad Al Busaidi in Muscat yesterday and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध ऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध ऊष्ट्रासन

आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्धोष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ओष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ओष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ओष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ओष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ओष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना
1: जी,
0: हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही

인도대리광보电台从印度时间5点15分钟到6点45分钟和16点到17点30分钟向亚洲播送普通话节目。早间广播频率为1525

欧松，印度古典音乐。今天的节目是阿米达布柴塔拉吉弹的西塔琴，请收听。